अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौज़े सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम बिलाल अहमद है और ये प्रोग्राम हर हफ्ते को 11 से 12 बजे लाइव नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम का नाम है वी आर वन, जिसमें हम जमात अहमदिया का और जमात अहमदिया की तालीमात और जमात अहमदिया के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए, आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान करीम की तलावत से आगाज़ करते हैं।